0: श्रोते हो, रेडिओ मनभावनच्या कार्यक्रमांबद्दल आपले अभिप्राय देण्यासाठी आम्हाला फोन करा 9284499433 ह्या क्रमांकावर, किंवा व्हॉट्सअप करा 9922337361 ह्या क्रमांकावर.
1: इतिहास के सफों पे दर्ज हैं कहानियां कई देशों के संघर्ष के दौर की. वो दौर जब जन्म लिया था इन देशों के राष्ट्रगीतों ने. ये राष्ट्रगीत कभी किसी राष्ट्रनायक के इर्द गिर्द लिखे गए तो कभी किसी देश के ध्वज के संदर्भ में. कहीं ये विशुद्ध प्रार्थना बने तो कभी गाए गए लोकगीत के रूप में. कहीं ये कामना है महारानी की दीर्घायु की तो कहीं है वंदना मातृभूमि की.

0: റേഡിയോ മൻഭാവൻ 90.8 FM, ഓൾവേസ് ഹാർട്ട് ടച്ചിംഗ്.
1: आजवर हजारो विद्यार्थ्यांचे यशस्वी करिअर घडवणारे 100% ट्रेनिंग अँड प्लेसमेंट असिस्टन्स करणारे उत्तर महाराष्ट्रातील बेस्ट इन्स्टिट्यूट अवॉर्डने सन्मानित कॉलेज केसेस ऑटोनॉमस इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट अँड रिसर्च, जे आहे विद्यार्थ्यांचे उज्ज्वल भविष्य घडवणारे प्लॅटफॉर्म.
2: अशा या उज्ज्वल भविष्य देणाऱ्या कॉलेज मध्ये प्रवेश सुरू आहे. MBA, MCA सारखे PG कोर्सेस, तसेच BBA, BMS, BCA सारखे UG कोर्सेस, सोबतच MCA इंटिग्रेटेड प्रोग्राम, अशा अनेक डिमांडिंग कोर्सेस साठी तेव्हा आजच प्रवेश घ्या आणि आपले फ्युचर सिक्युअर व ब्राइट करा. विजिट करा नॅक ए ग्रेड अँड MBA फॉर MBA प्रोग्राम, इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट अँड रिसर्च, जिल्हा उद्योग केंद्र मागे, जळगाव.
3: नमस्कार दोस्तो, मेरा नाम है मनोज और आप सुन रहे हैं 90.8 FM रेडियो मन भावन पर कार्यक्रम सुनो भाई साधो. दोस्तों, हम अपनी हैसियत कैसे नापते हैं? चमक धमक से, गहनों से, या उन कीमती चीज़ों से जो हमारे पास हैं? हमें लगता है कि अगर हमारा घर महल जैसा है और हम हीरे जवाहरात से लदे हैं तो हम सुरक्षित हैं. हमें अपनी कीमत पर गुमान होने लगता है. लेकिन कबीर साहब आज एक ऐसे मंदिर का जिक्र कर रहे हैं जो मामूली नहीं है. वह हीरे और मानिकों से जड़ा है. वह देखने में इतना भव्य है कि आंखें चौंधिया जाए, पर कबीर की पारखी नज़र उस चमक के पीछे छिपी एक कड़वी सच्चाई देख लेती हैं. आज का दोहा दिखावे और अस्तित्व के बीच के उस धोखे की परतें खोलेगा. आइए जानते हैं उस कीमती मंदिर का अंत क्या होने वाला है. कबीर मंदिर लाश का जड़िया हीरे लाली, दिवस चारी का पेखणा, बिनसी जाएगा काल्हे.

सवाल श्रोताओं, कबीर साहब कहते हैं, कबीर मंदिर लाश का जड़िया हीरे लाली। कबीर यहाँ दो अर्थ दे रहे हैं। पहला, वह शरीर जो लाखों की कीमत का है और जिसमें हीरे लाल जैसे कीमती इंद्रियां और सांसें जड़ी हैं। दूसरा, वह बाहरी वैभव जिसे इंसान अपनी शान समझता है। देखने में यह मंदिर बहुत अद्भुत हैं, बहुत मजबूत हैं, पर अगली पंक्ति में वे

0: सारा भ्रम तोड़ देते हैं। दिवसचारी का पेखणा, यह जो तुम देख रहे हो, यह जो पेखणा यानी तमाशा है, यह सिर्फ 4 दिन का है। आज है, कल नहीं होगा, बिनसी जाएगा काल ही। कल यानी बहुत जल्द यह सब नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। इसे ऐसे समझिए कि जैसे आसमान में आतिशबाजी होती है, एक पल के लिए पूरा आसमान रंगों और हीरों जैसा जगमगा उठता है, लेकिन अगले ही पल सिर्फ काला धुआं और राख बचती हैं। कबीर कह रहे हैं कि तुम्हारी सुंदरता, तुम्हारी दौलत और तुम्हारा यह शानदार शरीर उस आतिशबाजी जैसा ही है। इसके कीमती होने के भ्रम में मत रहना, क्योंकि मौत की एक फूंक इस सारे दिए को बुझा देगी। आज का चिंतन, मेरे दोस्तों, आज जरा अपनी कीमती चीज़ों को देखिए। हम जिन चीज़ों को सहेजने में अपनी पूरी उम्र लगा देते हैं, क्या वे हमें अमर बना सकती हैं? क्या हीरे जवाहरात उस विदाई के क्षण को एक पल के लिए भी टाल सकते हैं? आज कोशिश कीजिए उस सुंदरता को पहचानने की जो कभी नष्ट नहीं होती। कबीर हमें डरा नहीं रहे, वे हमें बचकानापन छोड़ने को कह रहे हैं। खिलौना जितने भी कीमती होते तो खिलौने ही हैं। अपनी ज़िंदगी को सिर्फ बाहरी चमक थमक से मत तोलिए, भीतर के उस मंदिर को संवारिए जिसकी ज्योति कभी बुझती नहीं। याद रखिए, जो कल मिट जाने वाला है उस पर गर्व करना नादानी है, जो सदा रहने वाला है उसे खोजना ही बुद्धिमानी है। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात कबीर के एक नए सूत्र के साथ। सुनते रहिए मनोज के साथ, सुनो भाई साधो, 90.8 FM रेडियो मन भावन पर। तब तक के लिए राम राम।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मन भावन 90.8 FM, ऑलवेज हार्ट टचिंग।

0: आज मैंने धोबी, न्यूज़पेपर वाला, दूध वाला, बाइक की तनख्वाह, महीने के सारे पेमेंट्स कर दिए हैं। मेरा वॉलेट एकदम हल्का हो गया है। मैं हूँ महक और प्रोग्राम है खाना बदोशों की दुनिया। खर्चों का तो वैसे कोई अंत ही नहीं होता है, पर अगर सोचा जाए तो हमारे इन्हीं खर्चों से एक्चुअली किसी का घर भी तो चल रहा है ना, या यूं कहें कि किसी की जिंदगी भी तो चल रही है ना?
1: भैया 250 ग्राम मूंगफली कैसे दी?
2: 20 रुपए की है।
1: हाँ देना।
2: आप शायद नहीं हैं यहाँ।
1: तुम्हें कैसे पता मैं इसी कॉलोनी की हूँ? तुम लोगों की कुछ ज्यादा ही खबर रखते हो। तुम्हें पता होना चाहिए यहाँ रेजिडेंट वेलफेयर ने सभी आने जाने वालों का रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है। तुम्हारा रजिस्ट्रेशन कहाँ है?
2: अरे बिटिया नाराज ना हो, हम पिछले 10 साल से यहाँ रहते हैं, हम भी इसी कॉलोनी के हैं। वो देखो सामने गली के कोने में जो स्त्री करने वाली बैठी है ना, वो हमारी घरवाली है।
1: वो उस हरे बंगले की दीवार के आगे
2: जी
1: जो प्रेस करती है वहाँ, वो तो तिवारी अंकल का घर है।
2: तिवारी जी बड़े सज्जन आदमी हैं, अपने घर के नीचे का कमरा दिया हुआ है, हम वहीं रहते हैं। किराया देने की जगह हम उनके फ्री में कपड़े प्रेस कर देते हैं, और मेरी दोनों बिटियाँ उनके घर में खाना भी पकाती हैं। तो बस भगवान की बड़ी कृपा है।
1: फिर तो तुम्हें सभी जानते होंगे यहाँ।
2: कुछ दिन पहले यहाँ नुक्कड़ पर दो लड़के कॉलोनी की एक लड़की को छेड़ रहे थे, तो हमने खींच के चप्पल दे मारी। उस दिन से आज का दिन कभी नहीं दिखे दोनों। इलो बिटिया तुम्हारी मूंगफली।
1: सॉरी मैं आप पर यूं ही चिल्ला दी। आप ही के यहाँ पर मैं अपने और अपने पति के कपड़े इस्त्री करने देती हूँ। सॉरी। हाँ
2: अरे कोई बात नहीं बिटिया, कोई बात नहीं।
0: इस मूंगफली वाले भैया की तरह कितने ही ऐसे प्रवासी हैं जो शहर में अपनी पहचान किसी न किसी तरह बनाने में लगे ही हुए हैं।
3: मैं फर्रुखाबाद से दिल्ली आया हूँ करीब 10 साल पहले। यहाँ सिलाई का और लहंगे का काम करता हूँ मैं। यहाँ पे मतलब 300-400 लड़के यहाँ साथ काम कर रहे हैं अलग अलग कारखानों में पूरी दिल्ली में। हम लोग चले जाएंगे, काम बंद हो जाएगा तो काफी लोगों को नुकसान होगा, होटल वालों को नुकसान हो जाएगा जहाँ से हम खाना खाते हैं। एक दूसरे से काम चलता है एक दूसरे का, तो उसी में मकान किराया भी निकालते हैं और होटल से खाना भी खाते हैं, तो कड़ी बंदी हुई है, एक दूसरे से चलते रहते हैं पूरी।
4: मैं जिला बलिया का रहने वाला हूँ। पहले दिल्ली में आया था, मैं डेंटल फैक्ट्री में काम किया था, फैक्ट्री बाहर गई पर मैं गया नहीं यहाँ से। मैं कार भी सीख लिया, ड्राइविंग भी सीखा इसी रिक्शे चला करके। मेरा ड्राइविंग लाइसेंस हमारे पास, कार भी चलाता हूँ और ऑटो भी चलाता हूँ, बस यही तो है।
0: भारत में नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस के अनुसार करीब 60% प्रवासी पुरुष और 40% प्रवासी महिलाएं बेहतर विकल्पों के लिए गांव से शहर की ओर आती हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे मेरे पापा भी 15 साल पहले शहर आए थे। अब चाहे मैं ऑफिस में बैठ के लैपटॉप पे काम करूं या रिक्शे वाले भैया रिक्शा चलाएं, हम दोनों ही तो मेहनत कर रहे हैं ना, पैसा कमा रहे हैं और अपना नाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर नजरिए में इतना फर्क क्यों? थोड़ा सोचिए और अपने रोजमर्रा का व्यवहार बदलिए।
5: ये था माइग्रेशन पर यूनेस्को दिल्ली का एक खास प्रोग्राम।

वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत वतन का राग कार्यक्रम में आज हम स्मरण कर रहे हैं गोपीनाथ बारदोलाई को। कार्यक्रम के अंत में आजादी का अमृत महोत्सव प्रश्नोत्तरी के अंतर्गत आपसे हम एक सवाल पूछेंगे, जिसका सही जवाब देने वाले दो भाग्यशाली विजेताओं को मिलेगा आजादी के दुर्लभ तरानों पर केंद्रित जन गर्जे श्रृंखला से एक ऑडियो एल्बम और आजादी के रणबांकुरों का एक छाया चित्र। जवाब भेजने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस है watankaraag@gmail.com और radioazadhind@gmail.com। आप SMS के जरिए भी हमें जवाब भेज सकते हैं। हमारा नंबर है 7771908908। नंबर एक बार फिर सुन ले, 7771908908। सही जवाब के साथ अपने शहर का नाम और अपना ईमेल एड्रेस जरूर भेजें।

आजादी की यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्र वंदना के विविध स्वर जन गर्जे, अंग्रेजी राज के दमन लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति ऑडियो एल्बम का संग्रह जन गर्जे।

कोई भी व्यक्ति सही अर्थों में लोकप्रिय तब होता है जब वो लोगों के सुख दुख का भागीदार बनता है, उनके बीच रहता है और निस्वार्थ भाव से उनकी सेवा करता है। गोपीनाथ बारदोलाई को मैं एक ऐसा ही राजनेता मानता हूँ, जिन्होंने जीवन भर असम के आम लोगों के हित के लिए काम किया और निस्वार्थ भाव से किया। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा का ये वक्तव्य भारत रत्न श्री गोपीनाथ बारदोलाई के संपूर्ण व्यक्तित्व को सटीक परिभाषित करता है। वो एक ऐसे विरले व्यक्ति थे जिन्होंने रचनात्मक राष्ट्रीयता के प्रति अपने पूरे जीवन को समर्पित कर दिया। असम के स्वतंत्र अस्तित्व की रक्षा और उसके संपूर्ण विकास की दिशा में उन्होंने अविस्मरणीय काम किया, इसीलिए असम की जनता उन्हें लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलाई कहा करती थी। गोपीनाथ बारदोलाई का जन्म 6 जून सन 1890 में असम के नौगांव जिले के एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। कॉटन कोलिजिएट कोएड स्कूल गुवाहाटी में प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद सन 1911 में स्कॉटिश कॉलेज चर्च कलकत्ता से इतिहास में ऑनर्स स्नातक की उपाधि प्राप्त की। इसके बाद सन 1914 में एमए की शिक्षा पास की और 3 साल तक कानून की शिक्षा लेकर गुवाहाटी लौट आए। वो सबसे पहले सोनाराम हाई स्कूल गुवाहाटी में मुख्य अध्यापक के पद पर नियुक्त किए गए। इसी अनुभव के आधार पर उनमें शिक्षा के प्रति बहुत गहरी रुचि पैदा हुई और आगे चलकर पूर्वोत्तर भारत में जो पहला विश्वविद्यालय स्थापित किया गया उसके वो प्रमुख संस्थापक बने। पूर्वोत्तर में मेडिकल इंजीनियरिंग, कृषि और पशु चिकित्सा विज्ञान के कॉलेजों की स्थापना में उनकी प्रमुख भूमिका रही। विधि स्नातक होने के बाद सन 1917 में उन्होंने वकालत आरंभ की। ये समय राजनीतिक गुलामी का था। असम में चारों ओर गरीबी थी और लोग अशिक्षित थे, इसीलिए शोषित भी थे। गांधी जी से प्रेरित होकर गोपीनाथ जी ने सन 1921 में वकालत छोड़ दी और राष्ट्रीय आंदोलन के लिए पूरी तरह समर्पित हो गए। उन दिनों असम के चाय बागानों का पूरा लाभ अंग्रेज उठाया करते थे, जनता को सिर्फ मजदूरी मिलती थी। सादुला मंत्रिमंडल की शह पर अंग्रेज इन बागानों के मालिक बने बैठे थे। इस शोषण के खिलाफ उन्होंने कड़ी लड़ाई लड़ी। उधर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के जरिए विदेशी सामान के पूर्ण बहिष्कार का आह्वान किया। गोपीनाथ जी ने असम में दक्षिण के ग्वालपाड़ा जिले का पैदल दौरा किया और लोगों को जगाया। परिणाम ये हुआ कि असम की जनता ने भी विदेशी वस्त्रों की होली जलाई और चरखे पर सूत काटकर वस्त्र धारण करने लगे। इससे अंग्रेज सरकार बौखला गई, जिस वजह से गोपीनाथ जी और उनके साथियों को गिरफ्तार करके 1 वर्ष की कारावास की सजा दी, लेकिन वो अपने संकल्पों के साथ अडिग रहे।

गोपीनाथ जी द्वारा पूरे राज्य की पदयात्रा करके असम की समस्याओं को बहुत करीब से देखा, साथ ही लोगों से उनका आत्मीय रिश्ता भी बन गया, जिसकी वजह से असम की जनशक्ति इकट्ठी हुई और राष्ट्र की मुख्य धारा से जुड़ गई। सन 1932 में वो गुवाहाटी म्युनिसिपल बोर्ड के चेयरमैन चुने गए। इस समय तक असम में ना तो कोई हाईकोर्ट था और ना ही विश्वविद्यालय। गोपीनाथ जी ने कुछ देशभक्तों और असम एसोसिएशन के लोगों के साथ मिलकर इस संबंध में आंदोलन शुरू किया। सन 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हो गया था। ब्रिटिश सरकार ने भारतीय सैनिकों को उनकी इच्छा के विरुद्ध इस युद्ध में भेजा था, इसीलिए गांधी जी के नेतृत्व में इसका विरोध किया और असहयोग आंदोलन आरंभ कर दिया। युद्ध समाप्ति के बाद परिस्थितियां बदली और सन 1940 में चुनाव की प्रक्रिया आरंभ हुई और गोपीनाथ जी असम के मुख्यमंत्री बने। उन्होंने लोगों को संदेश दिया कि वो आजादी की रक्षा करें और राष्ट्र निर्माण से जुट जाएं। गोपीनाथ जी बहुत ही साहसी और दृढ़ राजनेता थे। अपना विरोध उन्होंने बहुत स्पष्ट और मजबूत तरीके से दर्ज करवाया। चाहे बात सन 1937 में असम विधानमंडल में विपक्ष के नेता के तौर पर बजट की कड़ी आलोचना की हो या सन 1938 और 39 में अफीम के व्यापार पर प्रतिबंध लगवाने की हो या चाय उद्योग द्वारा अर्जित लाभ पर कृषि आयकर विधेयक में निर्धनों को छूट देने की हो, उनके विरोध का हमेशा सकारात्मक परिणाम सामने आया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही अंग्रेजों ने भारत के अलग अलग हिस्सों में दल बनाने का प्रस्ताव रखा था। इस ग्रुपिंग सिस्टम को गोपीनाथ जी ने स्वीकार नहीं किया। उन्होंने तय किया कि असम अपना संविधान खुद बनाएगा। असम की असेंबली ने क्रिप्स मिशन की योजना को खारिज कर दिया। उसने अपना गण परिषद बनाया। इस तरह अंग्रेजों का कुचक्र टूट गया। इसी तरह उन्होंने सन 1946 में कैबिनेट मिशन के इस प्रस्ताव का भी कड़ा विरोध किया, जिसमें असम को बंगाल के साथ मिलाने की सिफारिश की गई थी। उनके प्रयासों से ही असम का कुछ हिस्सा पूर्वी पाकिस्तान में जाने से बच गया। असम अपनी अखंडता के साथ भारत में शामिल रहा। वो अपनी मातृभूमि के साथ लगातार जुड़े रहे।

देश की आजादी के बाद गोपीनाथ असम के प्रथम मुख्यमंत्री निर्वाचित हुए। अपने 3 वर्ष के छोटे से कार्यकाल में उन्होंने आधुनिक असम की मजबूत नींव रखी। शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने अभूतपूर्व कार्य किए। न्यायपूर्वक, निष्पक्ष और समतावादी समाज की स्थापना के उद्देश्य से उन्होंने गुवाहाटी हाईकोर्ट की स्थापना में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। जनजातीय सभ्यता और संस्कृति को सुरक्षित रखने में भी गोपीनाथ जी की पहल अविस्मरणीय है। उनकी अध्यक्षता में गणित संविधान उप समिति की सिफारिश पर ही संविधान में 6वीं अनुसूचित शामिल की गई, जिसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र के आदिवासी इलाकों के प्रशासन के लिए प्रावधान किया गया। इस तरह आदिवासी भूमि, चारागाहों और जंगलों के संरक्षण का कार्य आरंभ हुआ, ताकि देश की अमूल्य वन संपदा का संरक्षण हो सके। गोपीनाथ जी का व्यक्तित्व और राजनैतिक जीवन समाज के सभी वर्गों के प्रति मानवता और भाईचारे की भावना से ओतप्रोत था। असम के महान संत शंकरदेव के दर्शन का उन पर बहुत गहरा असर था। साहित्य, शिक्षा, संगीत तथा संस्कृति, इस सबसे उनका आंतरिक जुड़ाव था। गोपीनाथ बारदोलाई एक अच्छे लेखक भी थे। उन्होंने गांधी जी की आत्मकथा और अनासक्ति योग का असमिया में अनुवाद किया था। साथ ही साथ उन्होंने बाल साहित्य की भी रचना की। सर्वधर्म संभाव, विश्व शांति और अहिंसा के प्रति उनकी दृढ़ आस्था थी। उन्होंने भगवान राम, ईसा मसीह, हजरत मोहम्मद और गौतम बुद्ध जैसे चरित्रों के जीवन गाथाएं समान आस्था और श्रद्धा के साथ लिखी। धर्म निरपेक्षता के वो प्रबल समर्थक थे और वसुधैव कुटुंबकम पर उनका पूरा विश्वास था। उनके लिए भाईचारा और समाज सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं था। वो विश्व शांति के हिमायती थे। अपने इन्हीं विचारों पर वो आजीवन चलते रहे। देश की आजादी के 3 साल बाद 5 अगस्त सन 1950 को गुवाहाटी में ही उन्होंने अंतिम सांस ली। सन 1999 में उन्हें मरणोपरांत देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से विभूषित किया गया। अपनी अंतिम सांस तक देश की सेवा करने वाले ऐसे महान व्यक्तित्व को हमारा शत शत नमन।

सरकार आपको बार बार बता चुकी है कि कोविड 19 पीरियड में आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। आप जागरूक बनिए, सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन कीजिए। कोरोना जितनी घातक बीमारी है, उतना ही सरल इसका बचाव भी है। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। स्वराज संस्थान संचालनालय द्वारा जनहित में प्रसारित। अभी आप सुन रहे थे आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत कार्यक्रम वतन का राग। मार्गदर्शन श्री शिव शेखर शुक्ल, समन्वय श्री संजय यादव और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की। और श्रोताओं, अब वक्त है आजादी का अमृत महोत्सव प्रश्नोत्तरी के विजेताओं के नाम जानने का। हमारा प्रश्न था कि राजा राम मोहन राय की शिक्षा किस शहर में हुई थी और सही जवाब है पटना। और श्रोताओं, वैसे तो हमें कई श्रोताओं ने सही जवाब भेजे हैं, लेकिन लकी ड्रॉ द्वारा चुने गए हमारे चार भाग्यशाली विजेता हैं सहदेव गौर दिल्ली से, पूजा दीप के मुल्ताई बैतूल मध्य प्रदेश से, प्रदीप गौतम सुमन रीवा मध्य प्रदेश से और सुरेंद्र मित्तल नई दिल्ली से। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। हम आप सभी विजेताओं को भेज रहे हैं आजादी के दुर्लभ तरानों पर केंद्रित जन गर्जे श्रृंखला से एक ऑडियो एल्बम और आजादी के रणबांकुरों का एक छायाचित्र। और श्रोताओं, अब बारी है आज के सवाल की। आजादी के अमृत महोत्सव प्रश्नोत्तरी के अंतर्गत हमारा आज का सवाल है कि गोपीनाथ बारदुलाई जी का जन्म किस तारीख को हुआ था। सवाल एक बार फिर सुन ले, गोपीनाथ बारदुलाई जी का जन्म किस तारीख को हुआ था। आपके जवाब हमारे पास 10 दिनों के भीतर पहुंच जाने चाहिए। जवाब भेजने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस है watankaraag@gmail.com और radioazadhind@gmail.com। आप SMS के जरिए भी हमें जवाब भेज सकते हैं। हमारा नंबर है 7771908908। नंबर एक बार फिर सुन लें, 7771908908। सही जवाब के साथ अपने शहर का नाम और अपना ईमेल एड्रेस जरूर भेजें।

0: आयटी करिअर घडवणारे 100% ट्रेनिंग अँड प्लेसमेंट असिस्टन्स करणारे उत्तर महाराष्ट्रातील बेस्ट इन्स्टिट्यूट अवॉर्डने सन्मानित कॉलेज केसेस ऑटोनॉमस इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट अँड रिसर्च जे आहे विद्यार्थ्यांचे उज्ज्वल भविष्य घडविणारे प्लॅटफॉर्म.
1: अशा या उज्ज्वल भविष्य देणाऱ्या कॉलेज मध्ये प्रवेश सुरू आहे. MBA MCA सारखे PG कोर्सेस तसेच BBA BMS BCA सारखे UG कोर्सेस सोबतच MCA इंटिग्रेटेड प्रोग्राम अशा अनेक डिमांडिंग कोर्सेस साठी तेव्हा आजच प्रवेश घ्या आणि आपले फ्युचर सिक्युअर व ब्राइट करा. विजिट करा NAC A ग्रेड अँड MBA फॉर MBA प्रोग्राम इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट अँड रिसर्च जिल्हा उद्योग केंद्र मागे जळगाव.
2: नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनोज और आप सुन रहे हैं 90.8 FM रेडियो मन भावन पर कार्यक्रम सुनो भाई साधो. दोस्तों, हम अपनी हैसियत कैसे नापते हैं? चमक धमक से, गहनों से, या उन कीमती चीज़ों से जो हमारे पास हैं? हमें लगता है कि अगर हमारा घर महल जैसा है और हम हीरे जवाहरात से लदे हैं तो हम सुरक्षित हैं. हमें अपनी कीमत पर गुमान होने लगता है. लेकिन कबीर साहब आज एक ऐसे मंदिर का जिक्र कर रहे हैं जो मामूली नहीं है. वह हीरे और मानिकों से जड़ा है. वह देखने में इतना भव्य है कि आंखें चौंधिया जाए, पर कबीर की पारखी नज़र उस चमक के पीछे छिपी एक कड़वी सच्चाई देख लेती हैं. आज का दोहा दिखावे और अस्तित्व के बीच के उस धोखे की परतें खोलेगा. आइए जानते हैं उस कीमती मंदिर का अंत क्या होने वाला है. कबीर मंदिर लाश का जड़िया हीरे लाली दिवस चारी का पेखणा बिनसी जाएगा काल्हे. कबीर मंदिर लाश का जड़िया हीरे लाली कबीर मंदिर लाश का

सवाल श्रोताओं, कबीर साहब कहते हैं, कबीर मंदिर लाश का जड़िया हीरे लाली। कबीर यहाँ दो अर्थ दे रहे हैं। पहला, वह शरीर जो लाखों की कीमत का है और जिसमें हीरे लाल जैसे कीमती इंद्रियां और सांसें जड़ी हैं। दूसरा, वह बाहरी वैभव जिसे इंसान अपनी शान समझता है। देखने में यह मंदिर बहुत अद्भुत हैं, बहुत मजबूत हैं, पर अगली पंक्ति में वे सारा भ्रम तोड़ देते हैं। दिवसचारी का पेखणा, यह जो तुम देख रहे हो, यह जो पेखणा यानी तमाशा है, यह सिर्फ चार दिन का है। आज है, कल नहीं होगा, बिनसी जाएगा काल ही। कल यानी बहुत जल्द यह सब नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। इसे ऐसे समझिए कि जैसे आसमान में आतिशबाजी होती है, एक पल के लिए पूरा आसमान रंगों और हीरो जैसा जगमगा उठता है, लेकिन अगले ही पल सिर्फ काला धुआं और राख बचती हैं। कबीर कह रहे हैं कि तुम्हारी सुंदरता, तुम्हारी दौलत और तुम्हारा यह शानदार शरीर उस आतिशबाजी जैसा ही है। इसके कीमती होने के भ्रम में मत रहना, क्योंकि मौत की एक फूंक इस सारे दिए को बुझा देगी। आज का चिंतन, मेरे दोस्तों, आज जरा अपनी कीमती चीज़ों को देखिए। हम जिन चीज़ों को सहेजने में अपनी पूरी उम्र लगा देते हैं, क्या वे हमें अमर बना सकती हैं? क्या हीरे जवाहरात उस विदाई के क्षण को एक पल के लिए भी टाल सकते हैं? आज कोशिश कीजिए उस सुंदरता को पहचानने की जो कभी

0: नष्ट नहीं होती। कबीर हमें डरा नहीं रहे, वे हमें बचकानापन छोड़ने को कह रहे हैं। खिलौना जितने भी कीमती होते तो खिलौने ही हैं। अपनी ज़िंदगी को सिर्फ बाहरी चमक थमक से मत तोलिए, भीतर के उस मंदिर को संवारिए जिसकी ज्योति कभी बुझती नहीं। याद रखिए, जो कल मिट जाने वाला है उस पर गर्व करना नादानी है, जो सदा रहने वाला है उसे खोजना ही बुद्धिमानी है। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात कबीर के एक नए सूत्र के साथ। सुनते रहिए मनोज के साथ सुनो भाई साधो 90.8 FM रेडियो मनभावन पर। तब तक के लिए राम राम।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मनभावन 90.8 FM, ऑलवेज हार्ट टच।

0: आज मैंने धोबी, न्यूज़पेपर वाला, दूध वाला, बाइक की तनख्वाह, महीने के सारे पेमेंट्स कर दिए हैं। मेरा वॉलेट एकदम हल्का हो गया है। मैं हूँ महक और प्रोग्राम है खाना बदोशों की दुनिया। खर्चों का तो वैसे कोई अंत ही नहीं होता है, पर अगर सोचा जाए तो हमारे इन्हीं खर्चों से एक्चुअली किसी का घर भी तो चल रहा है ना, या यूं कहें कि किसी की जिंदगी भी तो चल रही है ना?
1: भैया 250 ग्राम मूंगफली कैसे दी?
2: 20 रुपए की है।
1: हाँ देना।
2: आप शायद नहीं हैं यहाँ।
1: तुम्हें कैसे पता मैं इसी कॉलोनी की हूँ? तुम लोगों की कुछ ज्यादा ही खबर रखते हो। तुम्हें पता होना चाहिए यहाँ रेजिडेंट वेलफेयर ने सभी आने जाने वालों का रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है। तुम्हारा रजिस्ट्रेशन कहाँ है?
2: अरे बिटिया नाराज ना हो, हम पिछले 10 साल से यहाँ रहते हैं, हम भी इसी कॉलोनी के हैं। वो देखो सामने गली के कोने में जो इस्त्री करने वाली बैठी है ना, वो हमारी घरवाली है।
1: वो उस हरे बंगले की दीवार के आगे
2: जी
1: जो प्रेस करती है वहाँ, वो तो तिवारी अंकल का घर है।
2: तिवारी जी बड़े सज्जन आदमी है, अपने घर के नीचे का कमरा दिया हुआ है, हम वहीं रहते हैं। किराए देने की जगह हम उनके फ्री में कपड़े प्रेस कर देते हैं और मेरी दोनों बेटियाँ उनके घर में खाना भी पकाती हैं। तो बस भगवान की बड़ी कृपा है।
1: फिर तो तुम्हें सभी जानते होंगे यहाँ।
2: कुछ दिन पहले यहाँ नुक्कड़ पर दो लड़के कॉलोनी की एक लड़की को छेड़ रहे थे, तो हमने खींच के चप्पल दे मारी। उस दिन से आज का दिन कभी नहीं दिखे दोनों। इलो बिटिया तुम्हारी मूंगफली।
1: सॉरी मैं आप पर यूं ही चिल्ला दी। आप ही के यहाँ पर मैं अपने और अपने पति के कपड़े इस्त्री करने देती हूँ। सॉरी। हाँ
2: अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बिटिया, कोई बात नहीं।
0: इस मूंगफली वाले भैया की तरह कितने ही ऐसे प्रवासी हैं जो शहर में अपनी पहचान किसी न किसी तरह बनाने में लगे ही हुए हैं।
3: मैं फर्रुखाबाद से दिल्ली आया हूँ करीब 10 साल पहले। यहाँ सिलाई का और लहंगे का काम करता हूँ मैं। यहाँ पे मतलब 300-400 लड़के यहाँ साथ काम कर रहे हैं अलग अलग कारखानों में पूरी दिल्ली में। हम लोग चले जाएंगे, काम बंद हो जाएगा तो काफी लोगों को नुकसान होगा, होटल वालों को नुकसान हो जाएगा जहाँ से हम खाना खाते हैं। एक दूसरे से काम चलता है एक दूसरे का, तो उसी में मकान किराए भी निकालते हैं और होटल से खाना भी खाते हैं, तो इसे कड़ी बंदी हुई है, एक दूसरे से चलते रहती है पूरी।
4: मैं जिला बलिया का रहने वाला हूँ। पहले दिल्ली में आया था, मैं डेंटल फैक्ट्री में काम किया था, फैक्ट्री बाहर गई पर मैं गया नहीं यहाँ से। मैं कार भी सीख लिया, ड्राइविंग भी सीखा इसी रिक्शे चला करके। ये ड्राइविंग लाइसेंस हमारे पास, कार भी चलाता हूँ और ऑटो भी चलाता हूँ, बस यही तो है।
0: भारत में नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस के अनुसार करीब 60% प्रवासी पुरुष और 40% प्रवासी महिलाएं बेहतर विकल्पों के लिए गांव से शहर की ओर आती हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे मेरे पापा भी 15 साल पहले शहर आए थे। अब चाहे मैं ऑफिस में बैठ के लैपटॉप पे काम करूं या रिक्शे वाले भैया रिक्शा चलाएं, हम दोनों ही तो मेहनत कर रहे हैं ना, पैसा कमा रहे हैं और अपना नाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर नजरिए में इतना फर्क क्यों? थोड़ा सोचिए और अपने रोजमर्रा का व्यवहार बदलिए।
5: ये था माइग्रेशन पर यूनेस्को दिल्ली का एक खास प्रोग्राम।

वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत वतन का राग कार्यक्रम में आज हम स्मरण कर रहे हैं गोपीनाथ बारदोलाई को। कार्यक्रम के अंत में आजादी का अमृत महोत्सव प्रश्नोत्तरी के अंतर्गत आपसे हम एक सवाल पूछेंगे, जिसका सही जवाब देने वाले दो भाग्यशाली विजेताओं को मिलेगा आजादी के दुर्लभ तरानों पर केंद्रित जन गर्जे श्रृंखला से एक ऑडियो एल्बम और आजादी के रणबांकुरों का एक छायाचित्र। जवाब भेजने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस है watankarag@gmail.com और radioazadhind@gmail.com। आप SMS के जरिए भी हमें जवाब भेज सकते हैं। हमारा नंबर है 7771908908। नंबर एक बार फिर सुन लें, 7771908908। सही जवाब के साथ अपने शहर का नाम और अपना ईमेल एड्रेस जरूर भेजें।

आजादी की यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्र वंदना के विविध स्वर जन गर्जे। अंग्रेजी राज के दमन लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति ऑडियो एल्बम का संग्रह जन गर्जे।

कोई भी व्यक्ति सही अर्थों में लोकप्रिय तब होता है जब वो लोगों के सुख दुख का भागीदार बनता है, उनके बीच रहता है और निस्वार्थ भाव से उनकी सेवा करता है। गोपीनाथ बारदोलाई को मैं एक ऐसा ही राजनेता मानता हूँ जिन्होंने जीवन भर असम के आम लोगों के हित के लिए काम किया और निस्वार्थ भाव से किया। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा का ये वक्तव्य भारत रत्न श्री गोपीनाथ बारदोलाई के संपूर्ण व्यक्तित्व को सटीक परिभाषित करता है। वो एक ऐसे विरले व्यक्ति थे जिन्होंने रचनात्मक राष्ट्रीयता के प्रति अपने पूरे जीवन को समर्पित कर दिया। असम के स्वतंत्र अस्तित्व की रक्षा और उसके संपूर्ण विकास की दिशा में उन्होंने अविस्मरणीय काम किया, इसीलिए असम की जनता उन्हें लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलाई कहा करती थी। गोपीनाथ बारदोलाई का जन्म 6 जून सन 1890 में असम के नौगांव जिले के एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। कॉटन कोलिजिएट कोएड स्कूल गुवाहाटी में प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद सन 1911 में स्कॉटिश कॉलेज चर्च कलकत्ता से इतिहास में ऑनर्स स्नातक की उपाधि प्राप्त की। इसके बाद सन 1914 में एमए की शिक्षा पास की और 3 साल तक कानून की शिक्षा लेकर गुवाहाटी लौट आए। वो सबसे पहले सोनाराम हाई स्कूल गुवाहाटी में मुख्य अध्यापक के पद पर नियुक्त किए गए। इसी अनुभव के आधार पर उनमें शिक्षा के प्रति बहुत गहरी रुचि पैदा हुई और आगे चलकर पूर्वोत्तर भारत में जो पहला विश्वविद्यालय स्थापित किया गया उसके वो प्रमुख संस्थापक बने। पूर्वोत्तर में मेडिकल इंजीनियरिंग, कृषि और पशु चिकित्सा विज्ञान के कॉलेजों की स्थापना में उनकी प्रमुख भूमिका रही। विधि स्नातक होने के बाद सन 1917 में उन्होंने वकालत आरंभ की। ये समय राजनीतिक गुलामी का था। असम में चारों ओर गरीबी थी और लोग अशिक्षित थे, इसीलिए शोषित भी थे। गांधी जी से प्रेरित होकर गोपीनाथ जी ने सन 1921 में वकालत छोड़ दी और राष्ट्रीय आंदोलन के लिए पूरी तरह समर्पित हो गए। उन दिनों असम के चाय बागानों का पूरा लाभ अंग्रेज उठाया करते थे, जनता को सिर्फ मजदूरी मिलती थी। सादुला मंत्रिमंडल की शह पर अंग्रेज इन बागानों के मालिक बने बैठे थे। इस शोषण के खिलाफ उन्होंने कड़ी लड़ाई लड़ी। उधर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के जरिए विदेशी सामान के पूर्ण बहिष्कार का आह्वान किया। गोपीनाथ जी ने असम में दक्षिण के ग्वालपाड़ा जिले का पैदल दौरा किया और लोगों को जगाया। परिणाम ये हुआ कि असम की जनता ने भी विदेशी वस्त्रों की होली जलाई और चरखे पर सूत काटकर वस्त्र धारण करने लगे। इससे अंग्रेज सरकार बौखला गई, जिस वजह से गोपीनाथ जी और उनके साथियों को गिरफ्तार करके 1 वर्ष की कारावास की सजा दी, लेकिन वो अपने संकल्पों के साथ अडिग रहे।

गोपीनाथ जी द्वारा पूरे राज्य की पदयात्रा करके असम की समस्याओं को बहुत करीब से देखा, साथ ही लोगों से उनका आत्मीय रिश्ता भी बन गया, जिसकी वजह से असम की जनशक्ति इकट्ठी हुई और राष्ट्र की मुख्य धारा से जुड़ गई। सन 1932 में वो गुवाहाटी म्युनिसिपल बोर्ड के चेयरमैन चुने गए। इस समय तक असम में ना तो कोई हाईकोर्ट था और ना ही विश्वविद्यालय। गोपीनाथ जी ने कुछ देशभक्तों और असम एसोसिएशन के लोगों के साथ मिलकर इस संबंध में आंदोलन शुरू किया। सन 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हो गया था। ब्रिटिश सरकार ने भारतीय सैनिकों को उनकी इच्छा के विरुद्ध इस युद्ध में भेजा था, इसीलिए गांधी जी के नेतृत्व में इसका विरोध किया और असहयोग आंदोलन आरंभ कर दिया। युद्ध समाप्ति के बाद परिस्थितियां बदली और सन 1940 में चुनाव की प्रक्रिया आरंभ हुई और गोपीनाथ जी असम के मुख्यमंत्री बने। उन्होंने लोगों को संदेश दिया कि वो आजादी की रक्षा करें और राष्ट्र निर्माण से जुट जाएं। गोपीनाथ जी बहुत ही साहसी और दृढ़ राजनेता थे। अपना विरोध उन्होंने बहुत स्पष्ट और मजबूत तरीके से दर्ज करवाया। चाहे बाद सन 1937 में असम विधानमंडल में विपक्ष के नेता के तौर पर बजट की कड़ी आलोचना की हो या सन 1938 और 39 में अफीम के व्यापार पर प्रतिबंध लगवाने की हो या चाय उद्योग द्वारा अर्जित लाभ पर कृषि आयकर विधेयक में निर्धनों को छूट देने की हो, उनके विरोध का हमेशा सकारात्मक परिणाम सामने आया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही अंग्रेजों ने भारत के अलग अलग हिस्सों में दल बनाने का प्रस्ताव रखा था। इस ग्रुपिंग सिस्टम को गोपीनाथ जी ने स्वीकार नहीं किया। उन्होंने तय किया कि असम अपना संविधान खुद बनाएगा। असम की असेंबली ने क्रिप्स मिशन की योजना को खारिज कर दिया। उसने अपना गण परिषद बनाया। इस तरह अंग्रेजों का कुचक्र टूट गया। इसी तरह उन्होंने सन 1946 में कैबिनेट मिशन के इस प्रस्ताव का भी कड़ा विरोध किया, जिसमें असम को बंगाल के साथ मिलाने की सिफारिश की गई थी। उनके प्रयासों से ही असम का कुछ हिस्सा पूर्वी पाकिस्तान में जाने से बच गया। असम अपनी अखंडता के साथ भारत में शामिल रहा। वो अपनी मातृभूमि के साथ लगातार जुड़े रहे।

देश की आजादी के बाद गोपीनाथ असम के प्रथम मुख्यमंत्री निर्वाचित हुए। अपने 3 वर्ष के छोटे से कार्यकाल में उन्होंने आधुनिक असम की मजबूत नींव रखी। शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने अभूतपूर्व कार्य किए। न्यायपूर्वक, निष्पक्ष और समतावादी समाज की स्थापना के उद्देश्य से उन्होंने गुवाहाटी हाईकोर्ट की स्थापना में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। जनजातीय सभ्यता और संस्कृति को सुरक्षित रखने में भी गोपीनाथ जी की पहल अविस्मरणीय है। उनकी अध्यक्षता में गणित संविधान उप समिति की सिफारिश पर ही संविधान में 6वीं अनुसूचित शामिल की गई, जिसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र के आदिवासी इलाकों के प्रशासन के लिए प्रावधान किया गया। इस तरह आदिवासी भूमि, चारागाहों और जंगलों के संरक्षण का कार्य आरंभ हुआ, ताकि देश की अमूल्य वन संपदा का संरक्षण हो सके। गोपीनाथ जी का व्यक्तित्व और राजनैतिक जीवन समाज के सभी वर्गों के प्रति मानवता और भाईचारे की भावना से ओतप्रोत था। असम के महान संत शंकरदेव के दर्शन का उन पर बहुत गहरा असर था। साहित्य, शिक्षा, संगीत तथा संस्कृति, इस सब से उनका आंतरिक जुड़ाव था। गोपीनाथ बारदोलाई एक अच्छे लेखक भी थे। उन्होंने गांधी जी की आत्मकथा और अनासक्ति योग का असमिया में अनुवाद किया था। साथ ही साथ उन्होंने बाल साहित्य की भी रचना की। सर्वधर्म संभाव, विश्व शांति और अहिंसा के प्रति उनकी दृढ़ आस्था थी। उन्होंने भगवान राम, ईसा मसीह, हजरत मोहम्मद और गौतम बुद्ध जैसे चरित्रों के जीवन गाथाएं समान आस्था और श्रद्धा के साथ लिखी। धर्म निरपेक्षता के वो प्रबल समर्थक थे और वसुधैव कुटुंबकम पर उनका पूरा विश्वास था। उनके लिए भाईचारा और समाज सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं था। वो विश्व शांति के हिमायती थे। अपने इन्हीं विचारों पर वो आजीवन चलते रहे। देश की आजादी के 3 साल बाद 5 अगस्त 1950 को गुवाहाटी में ही उन्होंने अंतिम सांस ली। 1999 में उन्हें मरणोपरांत देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से विभूषित किया गया। अपनी अंतिम सांस तक देश की सेवा करने वाले ऐसे महान व्यक्तित्व को हमारा शत शत

सरकार आपको बार बार बता चुकी है कि कोविड 19 पीरियड में आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। आप जागरूक बनिए, सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन कीजिए। कोरोना जितनी घातक बीमारी है, उतना ही सरल इसका बचाव भी है। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। स्वराज संस्थान संचालनालय द्वारा जनहित में प्रसारित। अभी आप सुन रहे थे आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत कार्यक्रम वतन का राग। मार्गदर्शन श्री शिव शेखर शुक्ल, समन्वय श्री संजय यादव और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की। और श्रोताओं, अब वक्त है आजादी का अमृत महोत्सव प्रश्नोत्तरी के विजेताओं के नाम जानने का। हमारा प्रश्न था कि राजा राम मोहन राय की शिक्षा किस शहर में हुई थी, और सही जवाब है पटना। और श्रोताओं, वैसे तो हमें कई श्रोताओं ने सही जवाब भेजे हैं, लेकिन लकी ड्रॉ द्वारा चुने गए हमारे चार भाग्यशाली विजेता हैं सहदेव गौर दिल्ली से, पूजा दीप के मुल्ताई बैतूल मध्य प्रदेश से, प्रदीप गौतम सुमन रीवा मध्य प्रदेश से और सुरेंद्र मित्तल नई दिल्ली से। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। हम आप सभी विजेताओं को भेज रहे हैं आजादी के दुर्लभ तरानों पर केंद्रित जन गर्जे श्रृंखला से एक ऑडियो एल्बम और आजादी के रणबांकुरों का एक छायाचित्र। और श्रोताओं, अब बारी है आज के सवाल की। आजादी के अमृत महोत्सव प्रश्नोत्तरी के अंतर्गत हमारा आज का सवाल है कि गोपीनाथ बारदुलाई जी का जन्म किस तारीख को हुआ था। सवाल एक बार फिर सुन ले, गोपीनाथ बारदुलाई जी का जन्म किस तारीख को हुआ था। आपके जवाब हमारे पास 10 दिनों के भीतर पहुंच जाने चाहिए। जवाब भेजने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस है watankaraag@gmail.com और radioazadhind@gmail.com। आप SMS के जरिए भी हमें जवाब भेज सकते हैं। हमारा नंबर है 777-1908-908। नंबर एक बार फिर सुन लें, 777-1908-908। सही जवाब के साथ अपने शहर का नाम और अपना ईमेल एड्रेस जरूर भेजें।